0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
2: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
1: जी।
2: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
2: कैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है, तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही एक प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और ULTA की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
2: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
2: इस पर हमारी बिल्ली खम्बा नोचे पर अच्छा
1: तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखकर भेजे।
2: लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खम्बा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान है आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे।
1: बिल्कुल,
2: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझें, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना।
2: हाँ।
1: लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
2: चलिए सुनाइए।

तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर ख़राब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरफ से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, हर दिन उम्र

0: के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं। और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर, शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गाँव हैं, गलियाँ हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती हैं और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी।
0: बिल्कुल। और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था, या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जाने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना? जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
0: बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी कि यादों को सजो कर रखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी हैं। और यादें जहाँ हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी बात
1: है। वो ना जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना।
0: बिल्कुल।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहाँ सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियाँ हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से

0: निकल जाएगा, क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
1: बिल्कुल मंदाकिनी जी, और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे, तो लेते हैं एक अंतराल।
0: ठीक है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती हैं, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती हैं। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजोकर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखती हैं कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है, जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है। कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए, दूसरा लाइए। और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता। फिर उसको जब छोड़ते हैं, नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने। यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीज़ें हमसे छूटती नहीं हैं।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, PhD शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कॉरपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और JNU में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है, और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को, महिलाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल जिसमें वरिष्ठ

0: नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
0: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा। और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
0: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ता, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा उतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आँख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की हुई साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की चश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत शाम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था, जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुराकर यही कहती।

0: तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और
0: बिल्कुल
1: कंगन मोतियों की माले मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई, बटन,
0: जी
1: हुक, न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर
0: जी
1: कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल। और कितनी सारी यादें पास चली आती
1: हाँ
0: थी।
1: बिल्कुल
0: और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, जाने क्या क्या बढ़िया है, इन
1: बनाना।
0: सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था। और दिन, महीने, साल साल उसकी उठाधराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया
1: और
0: है।
1: किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा
0: बिल्कुल
1: कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे। बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम
0: सही
1: करते हैं,
0: बात, सही
1: तो
0: बात,
1: घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था, और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी, और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे, हाथ के पंखे होते थे, और खटिया, पलंग, तक के सिराने पर भी वो रखे होते थे।
0: आराम से रहकर
1: हाँ
0: मिल जाते थे आराम से, है
1: हाँ
0: ना
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था, या
0: जी।
1: दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल।
1: था।
0: तो ये भी एक सही, एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह, अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंथ दी हो,
1: बिल्कुल
0: एकदम
1: सही कह रही हो मंजरी।
0: जी
1: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां
0: जी
1: बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है
0: जी
1: मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय
0: बिल्कुल
1: में, और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो, तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माँओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है, तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई
1: हाँ
0: धराई का हो
1: जो
0: गया है।
1: बिल्कुल नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना,
0: जी
1: उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती हैं। तो आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर के
0: बिल्कुल
1: हमने सामान उठा के घर में भर लिए, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा
0: जी,
1: पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ
0: यानी
1: है
0: कहने का
1: ना।
0: मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था, वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती
1: लगी
0: थी, और
1: रहती
0: कोई
1: थी
0: शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम, तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई, लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए
1: हाँ तो
0: जरूर।
1: मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है, और
0: बिल्कुल
1: घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल। और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जोठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है,
1: हाँ।
0: मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहाँ घर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ रखी चीज़ों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीज़ें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताज़ा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठापटक कई बार

0: लगता है, अच्छा ये चीज़ यहाँ नहीं वहाँ रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहाँ रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज़ की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठा पटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठा पटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठा पटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम। अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना। इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहाँ से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहाँ हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे क्या है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खम्बे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खीज किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खीज बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही, उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई,
0: कभी थपकी दी और बहलाया,

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ। भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में।
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ।
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ।
1: क्योंकि इसी हमारे खुले गांव में।
0: हाँ।
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी, उसका
1: पिंडी कहते थे
0: जी,
1: रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी। कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब, कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी। हाँ,
1: वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे, सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है।

0: फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने के वो मिलने भी नहीं वाले, तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो
1: वाह।
0: जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको,
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उस पर एक्टिंग भी करते थे, क्योंकि
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह
0: मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी।
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग,
1: अच्छा
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शीश आप टीनेजर उनको बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है, तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है, अच्छा बंबई किधर है,
1: समंदर
0: इतने
1: के पार है।
0: समुद्र के पार है, तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं,
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को यह समझ
0: हाँ
1: में आ गया कि उसकी
0: हाँ
1: मंजिल बंबई है।
0: हाँ तो जब वो 14 साल के थे उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू द नेवल कैडेट, और उनकी भर्ती हुई दो शिप थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942, तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई, तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट,
1: ये जो बगावत थी नेवी की,
0: बगावत।
1: ये
0: हाँ,
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: पहली
1: क्या नाम है।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे,
1: जी
0: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, लेकिन बी अ
1: हाँ
0: कू,
1: बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा,
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। तो
1: अरे अरे
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: हाँ।
0: ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ, वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं, तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम
0: बहुत
1: थी
0: कम थी।
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच अ पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया गया गया डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए, तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है, तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं,
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल
0: मैं तुम्हें रस्टिकेट करूंगा नेवी से, तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है,
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
1: जी
0: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर
1: अब जब
0: फॉर
1: घर आए तो क्या हाल

0: घर आए तो फिर नेचुरली इतना फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहाँ गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और
0: बाकी
1: बाकी दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और जो से पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी, और
1: हाँ
0: हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपए, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे
0: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब शो जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे अरे
0: तो
1: अरे
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया, गांव में
1: यहां गलत संगत हो
0: गलत
1: गई।
0: संगत होगी इसकी,
1: हाँ
0: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के। तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं
0: डिसिप्लिन,
1: वहां पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक। तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्होंने वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटीवीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति,
0: हाँ,
1: दूध का
0: शौक, हाँ,
1: मलाई,
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्शा में देखा, यार इतना तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार धूप भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना पड़े।
0: हाँ, वो रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए। लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ से
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला।

0: है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
1: हाँ
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज वो हिसाब से. तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से. तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन, गहने
1: जेवर,
0: वहने, हाँ, खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल. तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए. दे वर 2-3 फैमिलीज, दे वर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी. पता नहीं कि बीच में के रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप. और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का
1: ट्रेन
0: लूटा
1: में
0: गया,
1: आए,
0: रेप हो
1: दंगों का
0: गया,
1: शिकार
0: मर्डर हो
1: हुए।
0: गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ. तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वालों को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि
1: इतना यकीन था।
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे. तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए. तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली. तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया. तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज द ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर.
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ. तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली. तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े. तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, कि सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है. तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाऊजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ, क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में, रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत मायने
0: तस्वीर ही
1: रखती
0: उनकी
1: थी।
0: मेमोरी थी, कि ये
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ, जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है कि उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकेंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो. तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती है तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा.
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: बोली।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ.

0: और कोई नहीं
1: क्या
0: लिख सकता
1: बात
0: ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी ये क्या जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है।
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा उनके जाने के बाद, जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल ही मुझे वापस
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी
0: मिली।
1: कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का और मिट्टी खो देने का इंसान

0: बयान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए, जाने कहां चले जाते हैं वो लोग
1: दुनिया
0: से जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे,
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी है।

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुणे शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया। दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया। फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी इज रिकॉर्डिंग आवर,
0: तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो,
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहां हुई,
1: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
0: जी,
1: में
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो हाँ, आपका गांव है।
0: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर, आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है हाँ, वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी, मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के।
1: लेकिन कमाल की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो वो टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग

0: इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
1: नहीं लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट
0: सब कुछ, लेकिन
1: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
0: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ दो तीन साल पहले ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
1: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
0: घर में भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलते अभी अब जाना, खेलने के लिए जाना है क्रिकेट खेलने जाना है या गोटी खेलने जाना है या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूँ साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5 और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है लेकिन वो माँ नहीं है,
1: तो एक अकेलापन आ जाता
0: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
1: जी जी,
0: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
1: यस,
0: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
1: कि मेरा तो कोई नहीं है,
0: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
1: हाँ,
0: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो को लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो एक जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड बिकॉज़ शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों होता है?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराशूटिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, इसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया? जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के। वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये

0: हर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा। तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने। वो इंसान खो गया क्योंकि अभी उसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चचगिर जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट बांद्रा स्टेशन यार माय फ्रेंड्स, यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार।
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है,
0: हाँ, एक
1: क्या
0: जर्नलिस्ट
1: बात
0: मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शीश आपको देखते थे यार,
1: ट्रेन में जाते
0: हाँ
1: हुए।
0: क्यों आते थे? तो बोले कभी
1: हाँ
0: बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो
1: चलते हैं।
0: हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा,
1: ये बहुत
0: तो वो
1: बारीक बात
0: स्पिरिचुअल
1: है
0: ताकत वापस
1: जी,
0: आएगी।
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बम्बई जा यार, तू बम्बई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बम्बई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो। बिकॉज दैट वाज, व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वॉज मैं बम्बई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर। वो है
1: गजब
0: हमारे
1: गजब,
0: पास।
1: यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम
0: सिनेमा
1: दो।
0: में काम दो,
1: वाह वाह
0: वो है
1: वाह,
0: मेरे पास चिट्ठी है, हमारे पास, मेरे पास रेडी ने उसको संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने
1: हाँ
0: मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत।
1: हाँ इंडस्ट्री वालों को थोड़ी
0: इंडस्ट्री को
1: पता
0: क्या
1: है इस
0: कीमत
1: बात
0: है कैप्टन की।
1: जी। आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ही वाज
1: क्या
0: द मेन
1: बात है।
0: स्टार ऑफ बराखाना शोज,
1: और ये
0: एनुअल इवेंट्स।
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के
0: हाँ
1: उनकी धुन पर
0: उन्होंने,
1: गाने लिखना शुरू कर दिया था
0: हाँ जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी,
1: जी।
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, ट्वेंटी
1: अरे
0: एट ट्वेंटी नाइन
1: बाप,
0: टाइम्स क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था।
0: ये उनका रियाज था, वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा है यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रिटाइज हुआ, कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे,
0: छोड़ी
1: बंबई आए,
0: 1950
1: साल
0: में,
1: कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स बम्बई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए
1: बंबई तो शहर ही निराला
0: पैसे,
1: है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया। 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं, उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए
0: हाँ, 3 महीने
1: और
0: में वापस
1: तीन
0: चले गए,
1: महीने में वापस चले गए,
0: वापस
1: और
0: चले गए
1: वापस
0: हार
1: आर्मी में।
0: हार के। और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो देव वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, चलो यार इसको रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई,
1: और
0: क्योंकि शादी के
1: शादी
0: लिए
1: भी
0: छुट्टी
1: लखनऊ
0: थी।
1: में हुई,
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई,
1: ये लड़की कैसे
0: और
1: मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है? वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का। तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है? तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? इसे हाँ, तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी ना।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक भुआ थी, शी वॉज, वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री,
1: अच्छा अच्छा
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में,
1: जी
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के नंद, उनका घर का नाम था नंद,
1: हाँ आनंद से नंद।

0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा, जो
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो।
1: जी
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई
0: सिलाई।
1: बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा साइकिल चलाना बहुत बड़ी
0: हाँ,
1: खासियत
0: बहुत
1: थी।
0: बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह
0: नहीं
1: वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए
0: नहीं कुछ देखने वाला ना क्या, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने वेखने
1: सीधे शादी तय।
0: दा शादी तय। बोलो उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ ये देखिए ये कमाल की
0: हाँ,
1: बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल
0: उसका
1: के
0: आपने
1: गाना
0: गाना भी लिखा
1: लिखा
0: है यार,
1: लड़की साइकिल
0: साइकिल
1: वाली।
0: वाली, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

देखते हैं कि दुल्हन दुल्हा मैचिंग हो रहा है कि नहीं। कलेजे विच ठंड रखिए दोस्तों, अगला दो गीत आपके लिए ला रहे हैं दुल्हन को मैचिंग दुल्हा मिले फुला रे और कलेजे विच ठंड रख ले क्वीन का गाना।

दोस्तों, हम दिन ब दिन काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जुगाड़ करते हैं, किस लिए? यही ना कि हमारी जिंदगी एकदम बेहतरीन हो जाए। कुछ लोग तो हमेशा लॉटरी भी लेकर रखते हैं कि कब किस्मत बदले और कब लग जाए लॉटरी। तो जब जिंदगी के सारे बंद ताले खुलने लगते हैं, तब ऊपर वाले से कहिए थैंक यू ऊपर वाले, खुले सारे बंद ताले। थ्रो अप योर हैंड्स इन द एयर नाउ जस्ट लाइक यू डोंट केयर। इकलौता मेरा दिल था, बस इश्क हुआ तो क्या कहे, जिंदगी बन गई है ट्रेजेडी या कॉमेडी, ये तो मुझे खुद नहीं पता। लोचाए उल्फत सा हो गया है। दोस्तों, अगला दो गीत आपके लिए ला रहे हैं लग गई लॉटरी और लोचाए उल्फत हो गया। ये है सुरमई शाम, आकाशवाणी कोची एफ एम रेनबो 107.5। आपके साथ मैं जुड़ रही हूँ लिमासानी।

गाने सुनते सुनते समय का भागे चले जाना, ये तो हम कभी रोक नहीं सकते। और देखिए ना कितना जल्दी एक घंटा बीत गया और मुझे आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे गाने हमने आकाशवाणी कुछ FM रेनबो स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किए, ये सारे गाने आपकी शाम को सुरमई बनाए। दोस्तों, आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। इसी उम्मीद पर आपसे विदा लेती हूँ कि ये जो गाने हमने आकाशवाणी कुछ FM रेनबो से आप तक पहुँचाए, आपकी शाम को बहुत बेहतरीन बनाए, ज्यादा सुरमई बनाए। इसी खुशी दिल में रखते हुए दो गाने आपके लिए पेश करते हुए आपसे इजाजत लेती हूँ। दिस इज लवासानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुरमई शाम। खुदा हाफिज़।

मेरी पिस्तौल के अंदर किसी भी एक गोली पर कोई पैगाम लिखा है, तुम्हारा नाम लिखा है।

नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में